इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं एक और एपिसोड कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। आज हम स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बात करेंगे दवाइयों के बारे में, जो हम आमतौर पर बीमार होने के बाद चिकित्सक से परामर्श करने के बाद लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के लिए दवाइयों का उपयोग अक्सर जरूरी होता है। दवाइयों का उपयोग व्यक्ति के रोग और उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक रोग होता है और वो उससे सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसके लिए दवाइयों का सेवन करना जरूरी होता है। दवाइयों के उपयोग के बारे में निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। वे रोगी की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं और रोग के लिए सही दवाइयों का चयन करते हैं। डॉक्टर के साथ अच्छी संवाद दृष्टि बनाए रखना आपकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए बहुत जरूरी है। अतिरिक्त रूप से स्वस्थ रहने के लिए सही आहार, व्यायाम, समय पर नींद लेना, नुकसानदायक आदतों से बचना और नियमित चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है। पर आज हम इस कार्यक्रम में आज के मेहमान से बात करेंगे दवाइयों के बारे में। जब डॉक्टर हमारे लिए परामर्श के बाद दवाइयां लिखते हैं, आइए आज हम उन दवाइयों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं एक विशेषज्ञ जो दवाई वितरित करते हैं और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत। आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पर। हमारे साथ मौजूद है अंकुर अरोड़ा जी, जो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और देश के जन औषधि केंद्रों की जानी मानी हकीकत को नजदीक से जानते हैं। आइए स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान श्री अंकुर अरोड़ा जी का। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, और रेडियो वितस्ता के श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: अंकुर जी, शुरुआत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना क्या है और इसका मकसद क्या है।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है सस्ती गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं जनता को उपलब्ध कराना। यह योजना 2008 में शुरू हुई थी, इसे लेकिन नया बल मिला 2015-16 से, जब इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में पुनः लॉन्च किया गया। इसके तहत पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती।
0: अंकुर जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जेनेरिक दवाई होती है उसकी और सामान्य दवाई में क्या अंतर होता है।
1: जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में कोई भी अंतर नहीं होता है
0: जी।
1: जो अंतर होता है वो सिर्फ प्रमोशन का होता है
0: जी।
1: ब्रांडेड दवाओं को प्रमोट करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाते हैं
0: जी।
1: जो डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर्स को अपनी दवाइयों के बारे में बताते हैं, क्वालिटी के बारे में बताते हैं। उनके ऊपर उनके मैनेजर्स होते हैं
0: जी,
1: फर्स्ट लाइन मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर, तो उस सबके एक्सपेंस मिला के एक दवाई की कीमत तैयार की जाती है
0: जी।
1: जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाइयों की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है
0: जी,
1: वो बिल्कुल सेम होती है
0: जी।
1: इवन कि कई मैन्युफैक्चरर बिल्कुल सेम नाम की ही जेनेरिक दवाई बना रहा है और वही मैन्युफैक्चरर ब्रांडेड दवाई भी बना रहा है।
0: मुझे जो समझ आ रहा है अंकुर जी, वो ये कि जब एक दवाई बनती है उसका एक बेसिक साल्ट होगा, हर कंपनी का अलग अलग नाम होता है। क्या जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत दवाइयां बेची जाती है, क्या उनका नाम अलग होता है या जो बेसिक साल्ट होता है उसके नाम से वो दवाई होती है।
1: एक्चुअली अभी जितने भी लोग हैं वो शायद इस चीज को अभी शायद जान नहीं पाए हैं, मैं आज ये बात क्लियर कर देता हूं आपके माध्यम से
0: जी।
1: जेनेरिक दवाई को हम क्या बोलते हैं, एक ब्रांडेड दवाई है, कोई भी फेमस ब्रांड आप माइंड में सोचो, उसका जो जेनेरिक नेम है दैट इज साल्ट, उसका जो केमिकल नेम है उसको जेनेरिक कहा जाता है
0: जी।
1: बेसिकली जेनेरिक नाम ही उसका केमिकल नेम है, साल्ट, जिसको हम साल्ट बोलते हैं आम भाषा में, तो उसी को जेनेरिक बोलते हैं। और ब्रांड का नाम ही निर्धारित किया जाता है कंपनी के द्वारा
0: जी।
1: ब्रांड के नाम से ही तो ब्रांड फेमस होता है ना
0: जी, यानी कि एक जेनरिक दवाई के अलग अलग कंपनी की सेम दवाइयों के अलग अलग नाम हो सकते हैं
1: बिल्कुल,
0: पर जो जेनरिक साल्ट जो उसको बेसिक साल्ट है वो सारी दवाइयों में एक
1: ही होता है बिल्कुल।
0: आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, जब इसको बनाया गया और लोगों के बीच में लाया गया, जो खास मकसद है वो क्या है?
1: देखिए, खास मकसद तो सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग महंगी महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते
0: जी,
1: जिनके कारण वो वंचित रह जाते हैं बीमारी का इलाज कराने में
0: जी,
1: तो अब सपोज करो किसी मध्यम वर्ग के परिवार का कोई बुजुर्ग है जिसको हार्ट की समस्या हुई है
0: जी,
1: अब एक ब्रांडेड दवाई अगर वो डॉक्टर द्वारा जो लिखी जाती है वो बाजार से जाके खरीदता है, केमिस्ट पे खरीदता है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है
0: जी,
1: उसकी जितनी भी 5-7 मेडिसिन होती है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है
0: जी,
1: उसकी कॉस्टिंग 3,000-3,500 पर मंथ की होती है
0: जी,
1: अब उसकी आमदनी ही बेचारे की 10-15,000 है, वो कैसे अफोर्ड करेगा?
0: ठीक है,
1: तो सरकार का लक्ष्य ही यही था कि जन औषधि केंद्र खोले जाए ताकि वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जैसे 3,500 या 3,000 की मैंने आपको बताया
0: जी,
1: उसकी बुजुर्ग की दवाई आती है मंथ की
0: जी,
1: अब वो जेनरिक स्टोर से जाएगा खरीदेगा तो वही दवाइयां उसकी 500 से 700 के बीच में आ जाएंगी। इस तरीके से उसका जो एक तो मंथली सेविंग भी जो उसके 2,500 मंथ के बचेंगे, क्योंकि साल के 24,000 से 30,000 रुपए हो जाते हैं सर
0: जी, और साथ में उसको सस्ती दवाई मिलके वो अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकता है।
1: आज हमारे केंद्र में भी सर ऐसे जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो मेरे से यही, आपने जो प्रश्न पूछा वही ये प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि सर क्या फर्क है, मेरा बीपी ठीक तो रहेगा, मेरा शुगर ठीक तो रहेगा
0: जी।
1: मैं उनको बोलता हूँ आप 30 स्टेप्स या मंथ की मेरे से कोर्स मत लो, आप सिर्फ 10 दिन का कोर्स लो और अपनी शुगर चेक करो,
0: ठीक है?
1: तो जो जुड़े हैं वो हटे नहीं, वो जुड़ रहे हैं और आगे नए नए लोगों को बता रहे हैं।
0: ये कुछ ऐसे भ्रम है, इन विषयों पर भी हम आगे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास एक कस्टमर आता है दवाई लेने के लिए, तो आप जब उनको दवाई देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पर होती है या आप उस प्रिस्क्रिप्शन का साल्ट देख के उनको दवाई देते हैं?
1: ऑब्वियसली जब कस्टमर आता है या तो वो अपने घर से ब्रांडेड दवाइयों के पत्ते लेके आता है मेरे पास कि ये सर ये आपके पास मिल जाएंगी, हमने सुना है कि जन औषधि केंद्र खुला है, तो एक बार तो वो इंटरेक्शन करने आता ही है
0: जी।
1: तो वो पत्ते ले, या तो वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है डॉक्टर की या वो हमें एक खाली स्ट्रिप्स दिखाता है दवाइयों की, ये मिल जाएगा, तो उसका हम जेनरिक नेम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया साल्ट
0: जी,
1: जैसे शुगर की दवाई है तो उसके अंदर क्या सॉल्ट होता है, सीटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन, तो हम सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन उसको सेम स्ट्रेंथ का दे देते हैं
0: जिससे उनको दवाई भी मिलती है और उनका जो कीमत है

0: लोगों तक पहुंची, या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इस योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार ने जब ये योजना तैयार की तो सरकार ने सिर्फ इतना सोचा कि आम जनता को सस्ती दवाइयां कैसे उपलब्ध कराई जाएं।
0: अंकुर जी, एक और प्रश्न मैं आपसे करता हूं। आप खुद कई आसपास के गांव के बारे में जानते हैं, क्या गांव के लोग भी जन औषधि योजना के बारे में जानते हैं?
1: अभी सिटीज में तो ये योजना आ गई है, बट गांव में अभी इतनी ज्यादा अभी जन औषधि केंद्र नहीं खुले हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य है 2027 तक इसको 27,000 तक केंद्र और खोलने का, जिसमें कि गांव भी शामिल है
0: जी, ताकि गांव तक भी,
1: गांव और कस्बों तक भी ये पहुंचे।
0: अंकुर जी, हम इस कार्यक्रम में बातचीत जारी रखे हुए हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत आपके जीवन में क्या मायने रखता है?
1: सर, संगीत के बिना तो जीवन ही नहीं है।
0: तो इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को आपका कोई मनपसंद गीत सुनाना चाहते हैं और आपको भी, तो आपका कोई मनपसंद गीत हो जो हम श्रोताओं तक लेके जाना चाहते हैं?
1: सर, वैसे तो मुझे बहुत सारे गीत पसंद हैं, बट एक गीत जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो है राहत फतेह अली खान साहब का है
0: जी,
1: ओरे पिया।
0: तो अंकुर जी, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए ये गाना गुनगुना सकते हैं?
1: ओके।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में, और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित मेहमान है श्री अंकुर अरोड़ा जी, जो एक दवाई वितरित करता है। आइए उनसे कुछ और प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। अंकुर जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जेनरिक दवाइयां क्या होती है।
1: सर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जेनरिक दवाइयों को हम जो एक्चुअली उसका जो केमिकल या साल्ट नेम है उसी को जेनरिक कहा जाता है
0: जी।
1: अब सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ
0: जी,
1: जेनरिक दवाइयां और ब्रांडेड में फर्क क्या होता है
0: जी।
1: फर्क इतना होता है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आप कमजोर हैं सर, आपको दूध एक गिलास दूध सुबह पीजिए और एक गिलास शाम को पीजिए,
0: ठीक है।
1: अब यही बात एक डॉक्टर कैसे बोलेगा, एक गिलास दूध सुबह पीजिए एक गिलास शाम को पीजिए, लेकिन डेयरी का ही दूध पीना है,
0: ठीक है,
1: वो ब्रांड हो गया,
0: ठीक है।
1: ठीक है, अब आप डॉक्टर के कहने पे डेयरी पे गए तो डेयरी ने बोला कि मेरा दूध तो 100 रुपए लीटर है
0: जी,
1: ऑब्वियसली आप लोगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला डेयरी का दूध पीना,
0: जबकि साधारण दूध उससे बहुत कम कीमत का
1: है।
0: तो ये फर्क आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में क्या फर्क है।
1: मैं चाहता हूँ लोग भी इस चीज को समझें
0: जी।
1: अब तो जनता अवेयर है, पढ़ी लिखी है, अब तो समझना चाहिए जनता को इस चीज को। एक्चुअली में जो केमिकल है वही काम करता है, ब्रांड काम नहीं करता, उसका केमिकल काम करता है बॉडी के अंदर।
0: हमने अंकुर जी आपको इसीलिए आमंत्रित किया ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि भारत सरकार की जो जन औषधि केंद्र है उसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने। अगर उनको मार्केट से दवाई लेनी है, अगर उसी लेवल की दवाई उनको कम कीमत पे मिल जाए, तो हम भी चाहते हैं कि लोगों का फायदा हो, और हम भी भारत सरकार की ओर से जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक लेके जाने का हमारा भी यही मकसद होता है। आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर लोगों में भ्रम होता है कि जेनरिक दवाइयां कमजोर होती है या असर नहीं करती, आप इसके विषय में क्या कहेंगे?
1: देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है
0: जी,
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं
0: जी।
1: WHO ने आज तक कभी भी ऐसी टिप्पणी या कोई आर्टिकल्स नहीं दिया जिसमें ये कहा गया हो कि जेनरिक दवाई की गुणवत्ता कम होती है
0: जी।
1: अगर ऐसा होता तो WHO अब तक ये आर्टिकल जारी कर चुका होता
0: जी।
1: ठीक है, दोनों का मैन्युफैक्चर भी सेम है
0: जी,
1: दोनों दवाइयों का जो बना रहे हैं दवाइयां वो दोनों सेम है। ब्रांडेड दवाइयों का बस उसमें ब्रांड का नाम छप जाता है और उसकी MRP डिसाइड की जाती है बाय कंपनी
0: जी।
1: और यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, सरकार सिर्फ मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चरिंग करवा के पूरी गुणवत्ता के साथ जो जो ब्रांडेड कंपनी की होती है वो उसी के साथ ही दवाई मैन्युफैक्चर करवा के वो डायरेक्टली उन्होंने अपने हब से सीधा डायरेक्ट यहाँ फैक्ट्री रेट पे हमें आता है ताकि हम जनता का फायदा कर सकें और उसको वो रेट पे दे सकें। उसमें कोई भी प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं जुड़े होते, मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ।
0: इस वजह से उस दवाई की जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जो दवाई बेची जाती है, इसी वजह से उस दवाई की कीमत कम होती है।
1: एक्सैक्ट
0: जी।
1: अब जैसे ये टी शर्ट मैंने पहन रखा हुआ है
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली 1500 या 1600 की होगी
0: जी।
1: अगर कि ये टी शर्ट जहां से बन रही है, अगर मैं वहीं से अपने ब्रांड की टी शर्ट या बिना ब्रांड की टी शर्ट लूं तो यही कॉस्टिंग मेरे को 150 रुपए की पड़ जाएगी
0: जी।
1: ये दैट इज अ ब्रांडिंग।
0: तो ये एक बहुत बड़ी है श्रोताओं, आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है उसके अंतर्गत जो दवाएं बेची जाती है, अंकुर जी के माध्यम से हम ये समझ पाए कि उन दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता है। जब वो विक्रेता तक पहुंचती है तो ही उनमें दवाइयों की कीमत में अंतर होता है। अंकुर जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे ख्याल आया कि जन औषधि केंद्र खोला जाए और लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए?
1: देखिए सर, मैं खुद भी हिस्सा रहा हूं 20 साल से फार्मास्यूटिकल का, एक बड़ी कंपनी के अंदर मैं भी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर चुका हूं
0: जी,
1: और 2 साल मैंने एज अ एरिया मैनेजर काम किया उसमें
0: जी।
1: तो मैंने सर अपने एक्सपीरियंस में ये देखा कि कई लोग जो हैं वो दवाइयां कम पैसे होने के कारण वो दवाइयां वो नहीं खरीद पा रहे थे। तो मैंने तब मेरे मन में ये चीज आया कि आम जनता तो फिर भी वंचित रह ही रही है मेडिसिन से
0: जी जी।
1: तो मेरी और मेरी वाइफ ने और मैंने तब ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा माध्यम सर्च करूंगा
0: जी,
1: जिसके माध्यम से मैं सस्ती दवाइयां लोगों तक पहुंचाऊं। और मुझे फिर ये भारत सरकार की योजना मिली
0: जी,
1: तो मैंने अप्लाई किया और मुझे अप्रूवल वहां से आ गया, तो मैंने शुरू किया।
0: तो आप जब ये दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो क्या दिल में एक खुशी, एक तसल्ली होती है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं?
1: बिल्कुल सर, संतुष्टि होती है कि जब लोग हैरान होते हैं कि इतने की है, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोगों को आदत थी इतनी महंगी दवाइयाँ खरीदने की, अब लोग जब आते हैं जुड़ते हैं तो बड़े खुश हो गए जाते हैं कि सर वाकई मतलब जो मेरी इतनी की मेडिसिन आती थी अब आप सिर्फ 50-90% का डिस्काउंट देके तो मतलब वो इजीली वो अफोर्ड कर पाते हैं मेडिसिन।
0: असल में ये डिस्काउंट जो आप देते हैं ये बेसिकली जो भारत सरकार की ओर से आप तक दवाइयां पहुंचती है तो वो उसी कीमत पे पहुंचती है जिस कीमत पर आप उसको सेल करते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी। देखिए हमारे समाज में हर कोई व्यक्ति अपना जब योगदान देता है तो हम अपने समाज को आगे बढ़ा देते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि हम एक दूसरे का साथी बने, एक दूसरे का सहारा बने। तो इस तरीके से जो भारत सरकार की ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारा भी मकसद ये है कि हमारे श्रोता इसके बारे में सुने और वो पता करें नेट से उनके आसपास प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत कौन सी दुकान है जहां से वो ये जेनरिक दवाइयां ले सकते हैं। और आज इंटरनेट का जमाना है, सारी जानकारी आपके हाथों में है। आप देखिए जो आसपास के आपके एरिया में शॉप है आप जरूर जाएं, इसके बारे में जानकारी लें। मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं, जब हम मार्केट से दवाएं लेते थे और उसके बाद जब ये योजना आई और हमारे घर दयालबाग में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का एक शॉप खुल गई और उसके बाद जब हमने उसके बारे में जाना तो आज हम भी वहीं से जेनरिक दवाइयां लेते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि जो ब्रांडेड दवाइयां हैं और जेनरिक दवाइयों में कोई अंतर हमें दिखता है। अंकुर जी एक और ब्रेक लेने का समय है, हम चाहते हैं कि एक और गाना आप बताएं और जो हम श्रोताओं को सुनाएं, आपका जो मनपसंद गीत हो।
1: एक वो सॉन्ग था कैसा ये इश्क है
0: जी,
1: अजब सा इश्क है।
0: आइए सुनाते हैं हम आपको अंकुर जी का ये मनपसंद गीत।

0: बहुत ही उमदा गीत आप लोगों ने सुना जो अंकुर जी की पसंद का था। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में है। अंकुर जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जन औषधि केंद्र आप चलाते हैं, क्या आपके पास हर किस्म की दवाई वहां पर उपलब्ध है?
1: सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने
0: जी,
1: क्योंकि लोगों को अभी इतना पता ही नहीं है कि जन औषधि पे कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल हैं।
0: जी,
1: जन औषधि में सर ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन ही अवेलेबल हैं, जैसे कि डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन यानी बीपी, थायराइड, हार्ट की मेडिसिन जितनी भी आती हैं, फिट्स की मेडिसिन हो गई, और जितनी भी जनरल मेडिसिन हैं वो सारी जन औषधि केंद्र पे आपको उपलब्ध हैं, हमारी जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार हर महीने नई नई मेडिसिन लॉन्च कर रही है, अपनी वैरायटी को बढ़ा रही है। 2015 में जब ये योजना आई थी तो तकरीबन 900 से 1200 के बीच में जो मेडिसिन थी, आज वो मेडिसिन बढ़के लगभग 3000 प्लस मेडिसिन हो गई।
0: यानी कि भारत सरकार भी इसका विस्तार कर रही है,
1: बिल्कुल,
0: ताकि हर कोई दवाई आपके जो केंद्र है उस पर मिले।
1: भारत सरकार ने लोगों की भलाई के लिए ये काम किया, लेकिन जब लोगों ने भी इस चीज को समझा और लोग जुड़े तो सरकार का भी एक फर्ज बनता है कि वो उसको बढ़ाए और एक ही इंसान को सारी मेडिसिन केंद्र पर मिले।
0: तो लोगों का रुझान इस केंद्र पर आने का दिन ब दिन बढ़ रहा है,
1: लोग अवेयर हो रहे हैं सर, जैसे कि आपके माध्यम से भी अवेयर, जैसे आपने प्रोग्राम चलाया, तो ऐसे सरकार भी काफी काफी जगह पे कैंप्स लगाती हैं इसके लोगों को जागरूक करने के लिए, और लोग हमारे केंद्र पे आते हैं तो हम भी जागरूक करते हैं, तो ऐसे ऐसे जो हमारे पास जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं।
0: जो आप केंद्र चलाते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके केंद्र पे लोगों को आना होगा उनको कहां पर आपके जन औषधि केंद्र पे आना पड़ेगा?
1: सर, मेरे दो केंद्र हैं, एक तो अंबाला कैंट खोजकीपुर रोड पे है।
0: जी जी,
1: जो दयालबाग रहते हैं वो तो खैर समझ जाएंगे।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में अंकुर जी आज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि जो हमारे श्रोता है उनको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, और अगर आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आज के डेट में इंटरनेट पर सारी जानकारियां उपलब्ध है। मकसद केवल और केवल यही है कि आम जन के लिए जेनरिक दवाइयां सस्ती दामों पे मिले और उनकी जो गुणवत्ता है, जैसे अंकुर जी ने कहा, भारत सरकार अपने देखरेख में तैयार कराती है और लोगों को उपलब्ध कराती है। और अब इस कार्यक्रम का समय अब समाप्त हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका कोई और मनपसंद गीत हो जिस गीत के साथ हम लोगों को छोड़ के इजाजत लेंगे।
1: सर, मेरे मनपसंद गीत हो गए। अच्छा। अब मुझे आप अपना मनपसंद गीत बताइए।
0: ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कोई आमंत्रित मेहमान हमारे मनपसंद का गीत सुनना चाहते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज टीम रेडियो विदस्ता की ओर से हम आपको एक गीत सुनाते हैं। गीत के बोल हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, और इस गीत के साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं। अंकुर जी, आपसे आखिर में भी ये जानना चाहूंगा कि आप अंबाला छावनी से प्रसारित होने वाला FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आज पहली बार आए हैं, आपको यहाँ आके कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं?
1: सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और रियली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, और मैं आया भी पहली बार हूँ और मुझे बहुत ही एक्चुअली अच्छा लगा ये यहाँ आके, तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। जय हिंद, जय भारत।
0: और आप हमें दीजिए इजाजत, और किसी और कार्यक्रम में आपके साथ फिर भेंट करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा एपिसोड 9। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्री अंकुर अरोरा जी, इनसे बात की भारत सपोरी ने। विषय था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, सहयोग राहुल अलियान का, रिकॉर्ड निर्देशन व प्रस्तुत किया भारत सपोरी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना।

0: की बनू हंसी फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अप

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star. Hum Safar Zindagi Ka.
1: नमस्कार. FM 90.0 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता. रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा. लघु कथाओं की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लघु कथा नहीं लेकर आया, आज मैं आपके लिए कुछ और ही लेकर आया हूं, और यह है सत्य कथा. हम अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं पैसे को. हम समझते हैं कि शायद पैसे के बिना जिंदगी के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है. कई जगह पर पैसा बिना बेबस हो जाता है, और पैसे वाले भी. मैं आज आपको आत्मकथा कहिए कि सत्य कथा सुना रहा हूं राकेश झुंझुनवाला की. 48,000 करोड़ से भी ज्यादा धन संपत्ति के मालिक राकेश झुंझुनवाला, उन्हीं की जुबानी ही बात. वो कहते हैं कि व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका मेरा जीवन दूसरों की नजर में एक उपलब्धि है, हालांकि काम के अलावा मेरे पास और कोई खुशी नहीं थी. पैसे केवल एक सत्य है जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं. इस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपनी पूरी जिंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और पैसे पर गर्व था ना, वो मृत्यु से पहले झूठा और बेकार हो गया है. आप अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को किराए पर तो ले सकते हैं, लेकिन आप बीमार होने के लिए या मरने के लिए किसको किराए पर नहीं ले सकते. कोई भी भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो खो जाने के बाद कभी नहीं मिलती, और वो चीज है जीवन. हम जीवन के किसी भी चरण में हों, समय के साथ हमें उस दिन का सामना करना होगा जब दिल बंद हो जाएगा. इसलिए अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें धोखा ना दें, बेईमानी या विश्वासघात कभी भी ना करें. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 रुपये या 3,000 रुपये या 4,00,000 रुपये, कितनी भी कीमत की जो घड़ी हो ना, उसका काम सिर्फ समय बताना ही है. हमारे पास 100 रुपये का पर्स हो या 500 का पर्स हो या 5,000 का पर्स हो, पर्स के अंदर तो एक सा ही सामान होता है ना. हम चाहे 5,00,000 की कार चलाएं या 50,00,000 की या 5 करोड़ की, रास्ता और दूरी तो नहीं बदल जाती ना, हमने पहुंचना तो उसी मंजिल पर है. और जिस घर में हम रहते हैं ना, चाहे वो 300 फुट का हो या 3,000 वर्ग फुट का, अकेलापन दोस्तों हर जगह एक जैसा होता है. आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं में नहीं है. आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरें, जब विमान नीचे गिरेगा ना, तो कोई क्लास मायने नहीं रखेगी, उसके साथ ही आपको नीचे आना होगा. इसलिए आशा करता हूं कि आपको भी एहसास होगा कि आपके पास दोस्त, भाई और बहनें हैं जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं. ये सच्ची खुशी है. इसीलिए कहते हैं कि ये अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित ना करें, उन्हें खुश रहना सिखाएं. जब वो बड़े होंगे ना, तो उन्हें चीजों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी होगी. जीवन क्या है? जीवन को समझने के लिए 3 स्थान हैं जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन को समझ सकते हैं. पहला स्थान है अस्पताल, और दूसरा स्थान है जेल, तीसरा स्थान है जहां सबको जाना है, शमशान. अस्पताल में आप समझेंगे कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। और जेल में आप देखते हैं कि कितनी कीमती है आजादी। शमशान में जाने पर आपको एहसास होता है कि जीवन तो कुछ भी नहीं है। आज जिस जमीन पर हम चल रहे हैं, कल वो हमारी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आज से, अभी से आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी पैसे का गुरूर है ना, उसको भूल जाइए। और खास तौर से उस गुरूर को अपनी जुबान पर तो कतई आने मत दीजिए। इसलिए विनम्र बने, जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। इस संसार में आपको लाने के लिए अपने माता पिता का धन्यवाद दें। और हम तो यही कहते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब प्राणी सुखी रहें।

0: और दोस्तों ये जो लघु कथाएं आप मुझसे सुनते हैं ना, ये लघु कथाएं मैं आपको सुनाता हूँ, ये भी आप जैसे भाइयों से सोशल मीडिया से ही प्राप्त होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपकी कोई मौलिक रचना है और उसको आवाज देकर हवाओं के रास्ते पूरी दुनिया के बीच में पहुंचाया जाए, तो हमें अपनी रचना भेजिए। यदि वो इस योग्य होगी कि उसको प्रसारित किया जा सके, तो निश्चित रूप से हम उसको आपके नाम के साथ में प्रसारित करेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको हमारे टेलीफोन नंबर का पता होना तो ज़रूरी है, तो इस टेलीफोन नंबर को अपने पास में नोट करके रख लीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 7056413010। एक बार पुनः आपको टेलीफोन नंबर बता रहा हूँ, 7056413010। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।
1: तो इच्छू भोजन नमत अशैरिया सिफर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ।
2: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शैव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शैव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवा की ये श्रृंखला।
3: नमस्कार, ललदेद हुंद युसी वाक उतै वनन वोल्सो, ये बहुत ही क्रांतिपूर्ण और बहुत ही परिवर्तनशील ललवाक है। ललदेद वनन गोरन वन्नम कुनै वचुन नेब्राई दोपनम अंदरे अचुन सुई गो लली में वाक्त वचुन तवे हुतुम नंगई नचुन। यानी गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसके कारण से मैं बाहर से अंदर आई और वही अंदर आना मेरे लिए एक क्रांति का सबब बन गया और इसलिए लला अब एक नग्न रूप में नाच रही है। इस वाक को समझना बहुत जरूरी है। गुरु ने ऐसा क्या शब्द कहा? हमारी संस्कृति में एक शब्द ब्रह्म है जो अपने में ही एक पूरा ब्रह्मांड हम मानते हैं, और ललदेत को गुरु ने कुछ ऐसा शब्द कहा जिससे ललदेत के जीवन में बाहर और अंदर एक क्रांति खड़ी हो गई। जो लला बाहर थी वो लला अंदर चली गई, और जो अंदर चली तो उसे एक नई ही दुनिया दिखाई दी। यानी वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जब मुड़ी तो एक क्रांति उसके अंदर घटी। और यही लला कहती है, तवई है तुम नंगई नसुन, यानी इसलिए वो नग्न अवस्था में नाचने लगी। ये नग्न अवस्था कपड़े उतरे हुए नग्न अवस्था नहीं, ये वो नग्न अवस्था है जहां पे हम सारे फसाद जिसके कारण से हम अंदर की दुनिया को छिपा के रखते हैं और बाहर की दुनिया में कुछ और दिखाते हैं, ये उस फसाद को तोड़ने की बात कर रही है। वो कह रही है मैंने वो सारी कंडीशन, सारे परसेप्शन, सारे बिलीफ, सारे आइडिया, सारे थॉट्स, सारे ऐसे जो जजमेंट्स उसके मन में थे जिसके कारण से एक आम आदमी दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसने वो सारे कंडीशंस छोड़ दिए और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो विचारहीन, विचारलेस, थॉटलेस स्टेट है। और उस थॉटलेस स्टेट से उसे वो परमात्मा दिखाई दिया, उसे वो शिव दिखाई दिया। कितनी गहरी बात ललदेत हमें इस वाक से कहती है। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि तो तो यो है वाक पन्ने हाइट तो यूजन लुक बोझन कि अथ वाकस मस्त कित पर सरस्वती हैकान ऐसा वही।

0: यह है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम गजल गायक जगजीत सिंह के ऊपर, और पेश करने जा रहे हैं रमेश मरहटा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।

ऐसी हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई और 2 साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिलकर गाने

0: वो छोटी सी रात वो लंबी
1: उनकी गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पार गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से संजीदा जज्बात से सजाया

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

पंजाब की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

सन 1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह पर एक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता रमेश मरहटा। यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: है दिल।
1: सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा।

0: हो गए हम।
1: प्यार का एक सुरीला नगमा है जिंदगी, सांसों की रफ्तार कहती है जी लो इसे, कल ये समा हो ना हो।

खुशबू तेरी मुझे महका जाती है, तेरी हर बात मुझे बहका जाती है। सांस को बहुत देर लगती है आने में, हर सांस से पहले तेरी याद आती है।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

दिल में एक तूफान सा उठ गया, उसने मुस्कुरा के देख लिया, वो हुस्ने मुद्दसम कातिलाना खूबसूरत है। मैंने जो उसे देखा, सारी बजम ने उसे देखा।

दिल दे के जान लेने वालों पे नादान जमाना हंसता है, दिल की बस्ती का लुटेरा तो तेरे ही मन में बसता है।

सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है।

0: उदासी।
1: मोहब्बत की सल्तनत पर राज हमारा आधा आधा है, कभी न छूटेगा साथ यही वादा है। और इसी वादे के साथ दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

कहे रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई सांझी मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोखोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है। दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं, ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझकर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके, वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का मित्र हो सकता है, इसी तरह माँ बेटे में मित्रता हो सकती है, पति पत्नी में भी मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हम उम्र के लोगों के मध्य ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पाए टूटे मुक्तहा। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है, ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यावसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरना लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक, दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप दा अपना रेडियो आप जी दी आवाज दिल तो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: Ilk hey dalacme Ilk hey Lata Mangeshkar Ilk hey Radio Mitasta Hum safar zindagi ka
1: Utai din na jawani nal chaldi
0: 90.0 megahertz par अब अलग केंद्र से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: पेश है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम को तैयार किया है सामुदायिक रेडियो गुड़गांव की आवाज ने। वार्ताकार है आरती। FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आप सबकी अच्छी सेहत और सही जानकारी के लिए हमेशा प्रयासरत है।
1: नमस्कार, विश्व टीकाकरण सप्ताह के उपलक्ष में हमारे साथ आज एक विशेष अतिथि हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। डॉक्टर लहरिया एक चिकित्सक, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और लेखक हैं। डॉक्टर लहरिया ने टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाने में भारत के COVID-19 प्रतिक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यही नहीं बल्कि वह प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों को ड्राफ्ट करने में एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। चलिए सुनते हैं डॉक्टर लहरिया के साथ यह वार्तालाप।
2: डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, भारत में टीकाकरण कवरेज में सुधार के प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियां हैं। सामुदायिक स्तर पर मुख्य बाधाएं क्या है जो हमें सभी के लिए पूर्ण टीकाकरण में सफलता प्राप्त करने से रोकती है?
3: इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वर्ष 1978 में शुरू हुआ था, जब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से इसको शुरू किया गया था। तो तब कुछ कम वैक्सीन होती थी और साथ में फोकस था कि शहरी बच्चों को टीकाकरण होगा। फिर जब 1985 में इसको एक नया नाम दिया गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो उसका तात्पर्य यह था कि अब यह शहरी से लेके ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह यूनिवर्सल होगा, इम्यूनाइजेशन होगा। लेकिन उसके बाद के 30 सालों में भी इम्यूनाइजेशन कवरेज काफी कम रहा। खासतौर से 2005 तक सिर्फ आधे बच्चे जो हर साल पैदा होते हैं उनको ही सारी रिकमेंडेड वैक्सीन मिल पाई थी। तो उसकी कई वजह थी। एक तो वैक्सीन की सप्लाई एक बड़ा चैलेंज होता था। दूसरा, क्योंकि हमारा देश बड़ा है, करीब 6.5 लाख गांव पूरे देश में है, तो हर गांव तक, हर नए बच्चे तक समय पर टीकाकरण पहुंचाना बड़ा अपने आप में एक चुनौती है। फिर एक बात आती है कि जो टीकाकरण की प्रक्रिया होती है वो सप्लाई और डिमांड दोनों पर निर्भर करती है। अब इसको समझते हैं। सप्लाई का मतलब हुआ कि टीकाकरण को हर बच्चे और हर गांव देहात तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि वहां पर टीकाकरण की सर्विसेज पहुंचे, अर्थात जो सरकारी सिस्टम है, जो टीके लगाता है, जो ANM होती है, वैक्सीनेशन करती है, वैक्सीन लेके वो उन लोगों तक पहुंचे, तो सप्लाई वहां तक हो। दूसरा, अगर कोई ANM या जो टीकाकरण के वैक्सीनेटर्स होते हैं उस गांव या कस्बे में पहुंच भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली इम्यूनाइजेशन कवरेज हाई होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह वॉलंटरी है। तो लोगों का आना भी जरूरी, अर्थात डिमांड भी होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों को या कोई व्यक्ति कहे कि मुझे अपने बच्चों को टीके लगवाने हैं और समय रहते लगवाने हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड का चैलेंज है। उसके अलावा यह भी देखा गया है, और जिसको आजकल काफी जोर शोर से जिस पर बात हो रही है उसको कहते हैं जीरो डोज चिल्ड्रन, अर्थात अभी भी हमारे देश में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीकों की पहली इवन ए सिंगल शॉट भी नहीं लगा होता है। अब ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पूरी तरह टीकाकरण करने के लिए 6 कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे को एक बार भी टीकाकरण नहीं लगा है तो हमें उसे गहराई में समझने की जरूरत है। तो हालांकि पिछले 20 सालों में देश में टीकाकरण के कवरेज में और जो वैक्सीन की संख्या है उनमें इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी जो टीकों का कवरेज है हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश या श्रीलंका या थाईलैंड है उनसे कम है। उन देशों में हर साल 95% से अधिक बच्चे लगभग सारे रिकमेंडेड वैक्सीन मिलते हैं। अभी भी हमारे देश में वो 80% करीब रहा हुआ है, और राज्यों में इनइक्विटी है, अर्थात केरल में, अगर केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक में अधिक प्रोपोर्शनेट बच्चों को टीके लगते हैं, लेकिन वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी भी काफी सारे बच्चे छूट जाते हैं। तो इस सप्लाई और डिमांड साइड दोनों की चुनौतियां हैं।
2: टीकाकरण की मांग में कमी क्यों है? क्या ये किसी विशेष समुदाय या जनसंख्या में समस्या ज्यादा दिखती है?
3: सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी कि हमारे जैसे विशाल देश में जहां पर 140 करोड़ की आबादी है, इतने सारे गांव, देहात, शहर, कस्बे, जिले हैं, वहां पर सभी जगह सेम कारण नहीं होता। तो कुछ तो हमें उस पर, और हर राज्य को, खासतौर से राज्यों को इस पर देखना होगा कि उनके राज्य में कौन सी पॉपुलेशन है जो छूट रही है और उस पॉपुलेशन में कारण क्या है। अब बात करते हैं जैसे कि माइग्रेंट पॉपुलेशन एक बड़ी चुनौती है कि जब लोग काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य एक जिले बल्कि विद इन डिस्ट्रिक्ट में एक गांव से शहर आ जाते हैं तो शहर में वो उनका लिस्टिंग नहीं होता है तो उनको नहीं पता होता। जो लोग आते हैं वो उनको कहाँ टीकाकरण होता है ये पता नहीं होता है और जो सप्लाई सिस्टम है या जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको पता नहीं होता कि कहाँ पर बच्चे आए तो उस तरह से छूट जाते हैं। तो माइग्रेंट पॉपुलेशन की एक चुनौती है। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे कि कुछ राज्य हैं जिनके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं कि वहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन होता है, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं बच्चों को साथ में लेके आते हैं तो उनके पास टीकाकरण का रिकॉर्ड नहीं होता। तो जहां पर नई जगह पर अगर वैक्सीनेशन करना भी चाहे तो माता पिता को पता नहीं होता है कि कौन सा टीका लगाए और टीकाकरण का रिकॉर्ड होता नहीं है। जो रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है उनके पास होता नहीं है तो वो सिस्टम भी नहीं समझ पाता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। तो एक माइग्रेंट का है। दूसरा कई सारी सब कम्युनिटीज होती हैं जहां पर वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट चाट होती है, हेजिटेंसी होती है कि उनको लगता है वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्योंकि अब बीमारियां कम हो गई हैं, टीकों की वजह से बीमारियों का असर कम हो गया तो उन्हें लगता है कि बीमारी इतनी है ही नहीं तो इसके टीके क्यों लगाए जा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि टीके लोगों को लगाए गए या अधिकतर लोग टीके लगवा रहे हैं। फिर बात करते हैं जैसे कि रिमोट हिली एरिया हो गया, ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई, तो उन पर उनमें समय रहते टीकाकरण नहीं हो पाता है और टीकाकरण सर्विसेज भी नहीं पहुंचती हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं। फिर बात आती है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो लेस देन सफिशियंट फंक्शनिंग है कि उसकी फंक्शनिंग इतनी अधिक नहीं होती। तो कहने को ऑन पेपर टीकाकरण हो रहा होता है लेकिन वास्तविकता में वहां तक सब लोग नहीं पहुंच रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को याद रखते हर परिस्थिति में अलग अलग कारण होते हैं और हमें उन कारणों को याद रखते हुए उस पर लोकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है।
2: इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगले 5-10 साल में ये वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए, वरना एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो सकती है?
3: मुझे नहीं लगता कि हमें उस नजर से देखना चाहिए। वैक्सीन डेवलपमेंट की एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है और निश्चित रूप से वैक्सीन एक प्रिवेंटिव इंटरवेंशन होते हैं लेकिन अगर वैक्सीन नहीं तो कोई और टूल आएगा। लेकिन हम किसी चीज को इतना गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैसे कि सारी दुनिया में लंबे समय से टीबी के लिए एक मोर इफेक्टिव वैक्सीन की खोज चल रही है लेकिन वो सफलता नहीं मिली है। उसी तरह एचआईवी के अगेंस्ट वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार चल रहा है लेकिन अब तक वो वैक्सीन नहीं बन पाई है। फिर बात करते हैं डेंगू के खिलाफ भी, डेंगू जो एक कॉमन इलनेस है, डेंगू बोलते हैं, उसके लिए भी वैक्सीन इतनी एक वैक्सीन फिलहाल आई है लेकिन वो भारत में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसके और अधिक एग्जामिनेशन की जरूरत है, वो कुछ सर्टेन परिस्थितियों में दी जा सकती है। तो वैक्सीन जो आएंगी भविष्य में हम उन पर टू मच रिलायंस नहीं कर सकते हैं लेकिन जो बन चुकी हैं सेफ एंड इफेक्टिव हैं उनके बेहतर यूटिलाइजेशन एक अप्रोच होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि आज के समय में जिन जो वैक्सीन हैं आने वाले समय में उससे अधिक वैक्सीन होंगे और समय के साथ उनकी एपिडेमियोलॉजी चेंज हो जाती है वैक्सीन की वजह से तो उसके चलते फिर हो सकता है कुछ पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगानी पड़े। जैसे कोविड-19 की वैक्सीन आज से 2 साल 3 साल पहले निहायत जरूरी थी लेकिन अब कोई कोविड-19 वैक्सीन की बात नहीं कर रहा है। तो उसी समय समय के साथ अगर हम कुछ बीमारियों पर काबू कर लें तो उन वैक्सीन की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन नई करीब 145 ऐसी बीमारियां पहचानी गई हैं जिनके खिलाफ वैक्सीन अंडर द डेवलपमेंट है, अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है।
2: ऐसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, बट दे आर सेफ टू यूज? प्राइवेट मार्केट में कैसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जिनको पॉपुलेशंस की जरूरत है, को जरूरत है लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, या फिर मिसकंसेप्शंस है जो कि गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती?
3: देखिए कई सारी वैक्सीन हैं जो बच्चों में भी लगती हैं और एडल्ट को भी लग सकती हैं। जैसे कि निमोकोकल वैक्सीन है बच्चों को लगाई जाती है लेकिन वो एडल्ट में भी बेनिफिशियल होती है। टाइफाइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये सारी एडल्ट के लिए भी होती हैं। फिर फ्लू वैक्सीन होती हैं इन्फ्लुएंजा के लिए और खासतौर से अब इन्फ्लुएंजा मोर सिवियरिटी के साथ आता है तो उनका एनुअल वैक्सीनेशन होता है। तो ये सारी वैक्सीन अभी वेरी रिसेंटली शिंगरेक्स जिसको अर्पी जोस्टर की वैक्सीन बोलते हैं 50 साल की अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाती है वो उपलब्ध हुई है। तो एक एंटायर रेंज ऑफ वैक्सीन है जो इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड होता है और खास तौर से जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है जैसे कि कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या लिवर किडनी की इलनेस है तो उन लोगों को इस तरह की वैक्सीन का काफी बेनिफिट होता है। तो
2: ठीक
3: जैसे कि
2: है।
3: जिनको भी कोई भी कोमॉर्बिडिटी है तो
2: हाँ
3: उन लोगों को काफी सारी वैक्सीन हैं, जिनमें निमोकोकल वैक्सीन हो गई, हिप वैक्सीन हो गई, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, हर्पी जॉस्टर वैक्सीन का एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। सिमिलरली टाइफॉइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी एडल्ट एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन को लगाई जा सकती है। लेकिन वैक्सीन के बारे में मैं एक बात और कहूंगा कि हम यहाँ पर ब्रॉडर प्रिंसिपल्स की बात कर सकते हैं, लेकिन इनको इंडिविजुअल अप्रोच फॉलो करनी होती है। खासतौर से अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज है तो उसमें लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं लगाई जाती है।
2: एचपीवी टीकाकरण की आदर्श आयु के बारे में काफी भ्रम है। क्या आप बता सकते हैं कि लोगों को कब टीकाकरण करवाना चाहिए? इसके अतिरिक्त क्या वृद्ध महिलाओं को इस टीके से कोई लाभ हो सकता है?
3: तो एचपीवी वैक्सीन रिकमेंड की जाती है 9 साल से लेके 40-45 साल तक की फीमेल के लिए। तो यूजुअली इसका रिकमेंडेशन है कि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो मोस्ट इफेक्टिव होती है वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, अगर 9 साल से 14 साल तक दे दी जाए, और अगर इस उम्र पर दी जाती है तो उसके 2 शॉट्स लगते हैं। 15 साल के बाद इस वैक्सीन के 3 शॉट्स की रिकमेंडेशन है, और इसमें कुछ वैक्सीन हैं जो 9 से 14 साल तक रिकमेंडेड हैं, कुछ 26 साल तक रिकमेंडेड हैं, और 45 साल तक भी यह वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऑफकोर्स 15 साल से 45 साल तक 3 शॉट्स की जरूरत होती है। बाकी ये वैक्सीन इतनी सेफ और इफेक्टिव है, दुनिया की करीब 120 कंट्री में इन वैक्सीन का यूज हो रहा है, और जो पद्धति या जो टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई जाती है तो उनके हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। लेकिन याद रखने की बात है कि कोई भी वैक्सीन होती है, कितनी भी सेफ और इफेक्टिव हो, एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक उसका एडवर्स इवेंट हो सकता है। तो यह कहना कि वो कोई एडवर्स इवेंट नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन लोग उसी को कोट करते हैं। लेकिन रिस्क ऑफ सच एडवर्स इवेंट इज वेरी लो। बाकी कोई भी चीज बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन लोग उस रिस्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन जो उसका बेनिफिट है। वो बेनिफिट होता है कि वैक्सीन इतनी सीरियस इलनेस को बचाती हैं। इनफैक्ट एचपी वैक्सीन के बारे में 6 टाइप के डिफरेंट कैंसर और कुछ अदर अदर टाइप ऑफ लीजन से भी प्रोटेक्ट करती है, सो दे आर वेरी इफेक्टिव।
2: अब हम अपने साक्षात्कार के सबसे रोमांचक और सबसे जानकारीपूर्ण भाग पर पहुंच गए हैं, मिथक या तथ्य। मैं टीकाकरण के बारे में कुछ हानिकारक गलतफहमियों के बारे में बात करूंगी। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर उनका खंडन करे। मिथक नंबर एक, रोगाणुओं के संपर्क में आने के कारण भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही मजबूत होती है, इसलिए उन्हें टीकों की आवश्यकता नहीं है।
3: आप जो बात कर रहे हैं कि इस तरह की धारणाएं होती हैं कि हमें रेगुलर एक्सपोजर होता रहता है विभिन्न पैथोजन से, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हमें बीमारियां नहीं होंगी, यह पूरी तरह गलत है। आइए इसको एक साइंटिफिक नजरिए से समझते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई पैथोजन आ जाता है, अर्थात हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन से लड़ रहा है, तो ऐसे में अगर दूसरा पैथोजन आ जाता है जो उस पर अटैक करता है हमारे शरीर पे, तो चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही बिजी है, हमारे जो फाइटर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, एक बीमारी से लड़ रहे हैं, तो उसका मतलब है वो दूसरी बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा अगर हमें रेगुलर इन्फेक्शन होंगे, और बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसमें अगर सेम पैथोजन फ्यूचर में इन्फेक्शन करता है, जैसे पास में इन्फेक्शन है, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो उसको पहचानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पैथोजन, कोई भी इन्फेक्शन होगा उससे लड़ने के लिए तैयार होगा। तो ये सब गलत धारणा है। मैं दोहराना चाहूंगा कि बेहतर तरीका है कि हम अपने शरीर को किसी भी बीमारी से बचाएं, और रिपीटेड इन्फेक्शन हमें बाकी इन्फेक्शन के लिए प्रोन बनाते हैं, ना कि उनसे प्रोटेक्ट करते हैं।
2: मिथक नंबर दो, वैक्सीन केवल वैश्विक राजनीति नियंत्रण और कॉरपोरेट लालच का एक उपकरण है।
3: यह निश्चित रूप से पूरी तरह एक मिस इन्फॉर्मेशन है। लोग जिस आधार पर इस आर्गुमेंट को देते हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में बनती हैं, तो उनका इंटरेस्ट होगा। लेकिन याद रखने की बात है कि वैक्सीन भले ही प्राइवेट सेक्टर में बनती हों, और कोई मैन्युफैक्चरर ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर है तो उसे प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो एक लॉजिकल सी बात है, लेकिन वैक्सीन लगाने का जो निर्णय होता है वो एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट लेते हैं, था ऐसे लोग निर्धारित करते हैं जिनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता कि वैक्सीन लगे या ना लगे। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मेडिकल डॉक्टर और टेक्निकल एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो ये देखते हैं कि अगर इस वैक्सीन को लगाने से फायदा होगा तो ही उसका रिकमेंडेशन किया जाता है, अगर फायदा नहीं होगा तो नहीं रिकमेंड किया जाता। तो उन लोगों का जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं उनका इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता है, उनका पब्लिक इंटरेस्ट होता है कि अगर ये वैक्सीन उपलब्ध है तो जनता को कैसे पहुंचे। फिर बात इन्हीं लोग ही करते हैं जो कहते हैं कि अच्छा अरे इनका किसी प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट है, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन नहीं बनाता, वो इंडस्ट्री वैक्सीन नहीं बनाती, तो कई सारे लोगों का उसमें बीमारियों की वजह से गंभीर बीमारी हो सकती थी, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो जस्ट बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ने वैक्सीन बनाई है या कुछ लोगों का उसमें पैसा लगाया है, हमें उसे शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। और अंत में एक इंटायर प्रक्रिया होती है, वैक्सीन बनाना एक प्रक्रिया है, वैक्सीन के बारे में निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, और अंत में मतलब लोगों को उसमें लगवाना लोगों का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई चिंता कि वैक्सीन सुरक्षित है, और वैक्सीन बनाने वालों का वैक्सीन लगाने के निर्णय में कोई रोल नहीं होता है।
2: मिथक 3, रोग प्राकृतिक है, हमें उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
3: यह भी एक अधूरे टेक्निकल लॉजिक पर आधारित बात है कि वैक्सीन की उस प्रक्रिया को रोकते हैं। याद रखने की बात है कि अगर किसी को नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो उसके दो आउटकम हो सकते हैं कि एक तो व्यक्ति को उसके बाद रिकवर हो जाएगा और उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और दूसरी आउटकम होगी कि व्यक्ति को गंभीर बीमारी होगी और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो बीमारी उसे ठीक होने की संभावना भी रखता है और साथ में गंभीर बीमारी की भी संभावना रखता है, तो यह इम्यूनिटी डेवलप करने का अच्छा तरीका नहीं है। जबकि अगर वैक्सीन दी जाए तो हम जानते हैं कि वैक्सीन जो गंभीर बीमारी होने की संभावना को जीरो कर देती है और निल कर देती है कि वैक्सीन लगाने पर गंभीर बीमारी नहीं होगी, लेकिन इम्यून प्रोटेक्शन अर्थात इम्यूनिटी उससे बन जाएगी। तो वैक्सीन वो सब फायदे देती है जो एक नेचुरल इन्फेक्शन दे सकता है विदाउट एनी रिस्क, जो वैक्सीन में वो रिस्क नहीं होते जो नेचुरल इन्फेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई कहता है कि हम तो नेचुरल इन्फेक्शन करेंगे और उससे प्रोटेक्शन देंगे, तो ये अपने हेल्थ के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क लेना है। हाँ, याद रखने की बात है कि कुछ केस ऐसे होते हैं इनमें वैक्सीन नहीं है तो उनमें हमारे पास चारा नहीं है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, लेकिन कई सारी बीमारियां जिनमें हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है और गंभीर बीमारी होने पर उसका खर्चा और उसके परिवार के ऊपर उसकी जो मार है वो बहुत अधिक पड़ेगी, उससे बचने के लिए वैक्सीन ही बेहतर तरीका है। तो ये चॉइस नहीं है कि वैक्सीन कराएं या नेचुरल इन्फेक्शन से डेवलप करें, तो वैक्सीनेशन इज द ओनली राइट चॉइस।
2: मिथक नंबर 4, गर्भवती महिलाओं को कभी भी कोई भी टीका नहीं लगाना चाहिए।
3: तो इसमें ऐसा है कि प्रेगनेंसी में जो भी वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए वो एक तो फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के सलाह के बाद ही दी जानी चाहिए। सारी वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जाती हैं, कुछ वैक्सीन जो लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली रिकमेंडेड की जाती हैं, जैसे टीटी की वैक्सीन, टिटनेस टॉक्साइड हो गया, और साथ में असलर पर्टेसिस और डीटैप नाम की वैक्सीन भी आती हैं, इनको भी प्रेगनेंसी में दिया जाता है, इनका बेनिफिट होता है। क्योंकि जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है वो जब बाहर की दुनिया में आता है तो उसके बॉडी में कुछ चीजों के अगेंस्ट रेसिस्टेंस नहीं होता, तो उसको हम डेवलप करना कराने का तरीका है कि प्रेगनेंसी में मदर को

0: वो वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैक्सीन प्रेगनेंसी में बाकी लोगों के वैक्सीनेशन से थोड़ी अलग होती है, लेकिन कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी में बहुत महत्व रखती हैं।
1: मिथक 5, एक समय में बहुत सारी वैक्सीन लेना एक व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को अत्यधिक भारी या ओवरलोड कर सकता है।
0: ओवर वैक्सीनेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं अभी बीच में अखबारों में पढ़ रहा था कि एक आदमी ने एक ही वैक्सीन को करीब 200 बार लगवाया, तो लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। अदरवाइज आपको रिकमेंडेड शेड्यूल है, वो यूजुअली कुछ वैक्सीन में एक शॉट होता है, कुछ में दो शॉट और थ्री शॉट होता है। ओवर वैक्सीनेशन जैसा कुछ नहीं है। हाँ, याद रखने की बात है, सिर्फ रिकमेंडेड शेड्यूल फॉलो करना है, और अगर आप रिकमेंडेड गवर्नमेंट शेड्यूल या जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो उसमें ओवर वैक्सीनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण का महत्व। प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ये सच है कि बच्चों की टीकाकरण की तुलना में गर्भवती महिलाओं में नियमित टीकाकरण का दर हमेशा कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी टीडीएपी वैक्सीन का कवरेज 56.6% है। आज भी कई चिकित्सक और समुदाय के सदस्य गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण को लेकर झिझकते हैं, क्योंकि इससे गर्भावस्था के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिशु पर संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण गर्भावस्था के दौरान कई दवाओं का सेवन मना होता है। हालांकि जहां तक टीकाकरण का सवाल है, दुनिया भर में सुरक्षा मुद्दों का सख्ती से पालन किया जाता है, और अब हमारे पास स्पष्ट डेटा समर्थित समझ है कि क्या सुरक्षित है और क्या असुरक्षित है। मातृ टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? मातृ टीकाकरण के दो अलग अलग फायदे हैं। सबसे पहले, यह गर्भावस्था की अवधि के दौरान मां और भ्रूण दोनों को गंभीर संक्रमण से बचाता है, और दूसरा, यह आईजीजी और आईजीए एंटीबॉडीज के प्लेसेंटल ट्रांसफर द्वारा जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को संक्रमण से बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए यानी आईजीए, यह श्वसन पथ और पाचन तंत्र के स्तर के साथ साथ लार, आंसू और स्तन के दूध में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी यानी आईजीजी, यह सबसे आम एंटीबॉडी है। यह रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में होता है। यह बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से बचाता है। गर्भावस्था के दौरान कौन से टीके लगवाना वर्जित है? जीवित क्षीण वायरस टीकों यानी लाइव अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन्स से गर्भावस्था के परिणामों पर संभावित प्रतिकूल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध लाइव के उदाहरण क्षीण टीके वायरल संक्रमणों के खिलाफ खसरा, कठमाला, रुबेला, चेचक, पीला बुखार, इन्फ्लुएंजा और मौखिक पोलियो वैक्सीन शामिल है। जीवित क्षीण जीवाणुरोधी टीकों में तपेदिक, बीसीजी और मौखिक टाइफाइड टीका शामिल है। गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन का भरोसा कैसे बढ़ाएं? महिलाएं अपनी व्यापक घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अक्सर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपयोग करती हैं और अक्सर अपनी भलाई की उपेक्षा करती हैं। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के लाभों के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रमुख निर्धारक है। टीकाकरण के महत्व के बारे में सफल वकालत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की प्रमुख भूमिका है। गर्भवती महिलाओं के मन में सकारात्मक प्रभाव के लिए प्राथमिक देखभाल चिकित्सा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात टेटनेस से सुरक्षा के लिए टेटनेस टॉक्साइड वैक्सीन या टीडीएपी की कितनी खुराक लेनी चाहिए? भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आमतौर पर 3 टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। इन टीकों में टेटनेस टॉक्साइड, टीडीएपी और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शामिल है।

टेटनेस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जिससे मां और नवजात शिशु दोनों को खतरा होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के कारण यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इलाज न किए जाने पर घातक जोखिम पैदा कर सकता है। नवजात टेटनेस ठीक न हुए नाभि स्तंभ के संक्रमण के कारण होता है। वैक्सीनेशन ही इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका है। टेटनेस टॉक्साइड के टीके गर्भावस्था के दौरान भी सुरक्षित हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान दो खुराक की सलाह दी जाती है, जिसमें 3 साल के भीतर अगली गर्भधारण के लिए बूस्टर खुराक होती है। टीटी टीकाकरण मातृ एवं नवजात सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे समय से पहले होने वाले बच्चे की जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलने पर TT1 यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए। TT2 TT1 के 4 सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए। यदि मां ने पिछली गर्भावस्था में 3 साल के भीतर TT2 की खुराक ली है तो भारत के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार टीटी की एक बूस्टर खुराक की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि स्तनपान अवधि के दौरान कौन से टीकों की सिफारिश की जानी चाहिए। एमपॉक्स, चेचक और पीले बुखार के टीकों को छोड़कर अन्य सभी टीके जैसे निष्क्रिय, जिनमें की एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस ए, HPV, इन्फ्लुएंजा, JE, IPV और रेबीज आते हैं। इसी के साथ लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण वायरस, जिनमें इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स और थायराइड आता है, ये सभी लिए जा सकते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण, जिनमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनः संयोजक, जिनमें आते हैं हेपेटाइटिस बी और मेनिंगोकॉकल। कॉन्जुगेट यानी संयुग्म, जिनमें आते हैं HIV, PCV, मेनिंगोकॉकल। पॉलीसैकेराइड, जिनमें आते हैं PVC और टाइफाइड। ये सारे वैक्सीन स्तनपान की अवधि के दौरान सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि बाल टीकाकरण दरों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अभी भी बड़े पैमाने पर वंचित हैं। टीकों पर विश्वास पैदा करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामान्य चिकित्सकों, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा बेहतर संचार रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। विश्वास निर्माण का यह प्रयास न केवल बच्चों और माँ की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टीकाकरण के समग्र रूप में समाज को मिलाने वाले व्यापक स्वास्थ्य लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी, ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें

0: 8056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: तुम्हें 5 लाख रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
1: नहीं, कभी नहीं।
0: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1 लाख 1 लाख तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
1: अयो नोको नोको नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
0: राम यहां। कुछ पियोगे?
1: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
0: नहीं, सोमरस।
1: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे दारू की बात कर रही थी, किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की है स्कॉच की?
0: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
1: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली, जल्दी पिलाओ महाराज।

0: सोमरस का कलर तो कोको कोला के जैसा है। महाराज
1: बोलो।
0: एक बात याद आ गई महाराज मेरे।
1: पूछो।
0: वो हमारे नीचे ये पीने के लिए कहीं परमिट है कहीं परमिट नहीं है, यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
1: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं, ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो।
0: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज।
1: बोलो।
0: इधर आओ। मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
1: हूँ। अच्छा।
0: एक पोटी थी।
1: पोटी?
0: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी।
1: अच्छा।
0: उसका नाम था चुनिया।
1: चुनिया?
0: हाँ। आजकल के जमाने की वो छोकरी थी, उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई। अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा।
1: शाबाश, तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ
2: चुनिया। अरे किधर है रे?

아직 가슴에 달고 훅 달아나 이제서야 마치 티 깐디라.

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ताई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
2: फिल्मी गीतों पर आधारित पेश है प्रोग्राम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। लीजिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपकी कसम फिल्म के गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आरडी बर्मन का है और आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

लीजिए अब सुनिए मन की आंखें फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चलते चलते से। गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाना जो वापस फिल्म का है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं मजरूं सुल्तानपुरी ने।

सभी श्रोताओं के लिए पेश है फिल्म शर्मिली का गाना, जिसे लिखा है नीरज ने, संगीत दिया है SD बर्मन ने और स्वर दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

इस कार्यक्रम का अगला गीत है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

अब आपकी नज़र है जान निसार अख्तर का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत से सजाया है जयदेव ने। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी के लिखे हुए गीत की, जो फिल्म त्रिशूल का है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत दिया है खयाम ने।

अब पेश है फिल्म ताजमहल का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसे लिखा है साहिर रिजानवी ने और संगीत रोशन का है।

इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत। संगीतकार आरडी बर्मन, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं उसका फीडबैक हमें जरूर रेडियो विदस्ता के इस नंबर पर दीजिए। नंबर है 7056413010। सरगम कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

आदाब, नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे।

मुझे अपने साथ ले जाता पत्थरों के शहर में, जहां बरसों पहले मैंने तराशे थे। बोलते मुजस्सम और पत्थरों के खुदा, जिनकी इबादत में हर कोई है मसरूफ, और उड़ते ही सदा

के खिलौनों से खेलता था, दौड़ता था, भागता था, मस्ता था, पेड़ों की टहनियों से झूला झूलता था। बारिश की बूंदों को अपनी कच्ची मुट्ठी में कैद करता था। सिर्फ एक बार लौटा दे मुझे मेरा बचपन, जो गलतियां हुई अब उनको न दोहराऊंगा, किसी से न रूठ जाऊंगा, किसी को न रूठने दूंगा, किसी से न शिकवा करूंगा और न किसी को शिकायत का मौका दूंगा, मगर मुझे लौटा दो मेरा बचपन, तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में

किसकी सूरत अब इस शीशे में उतारूं? टूट गया आईना, टुकड़े टुकड़े हो गया, जुबां बंद हो गई।

खामोश, चारों ओर पसरा है सन्नाटा। शायद फरामोश करना तुम्हारी आदत है, यूं ही पल पल हर पल मिटते रहे बेवजह।

यहां के मखमली मौसमों की धूप और गुलाबी ठंड हो। हुस्न दिलकशी का हर जुज तुम्हारे दामन में पनाह लिए हुए अभी भी जाविदा है, जिंदा है, जवां है। यकीनन खूबसूरत हो तुम, सिर्फ तुम। कभी यूं भी तो हो, ये नर्म मुलायम हवाएं तुम्हें छू कर गुजरे और तुम आओ, तुम आओ मेरी भूली बिसरी यादों में शामिल तुम हो।

बरसातों में तुम भीगते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, दूर से ही सही तुम्हें निहारता रहूं। चांद भी इन बादलों से चीर के निकल आया है तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। गरजते बरसते ये बादल, ये हवाएं तुम्हारे गेसों, तुम्हारे रुखसार को छूने में है मुंतजर। चले आओ अपनी मुस्कुराहटों के संग, यहां खेले लुक्का छुपी और मुस्कुराए इन फिजाओं के साथ साथ।

0: आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम अपने रेडियो दोस्त रमेश मैडम को
1: आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक लगातार रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और रेडियो संचालिका कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।